ओके जी तासु जमुंगे दे सना कॉस्मेटिक पाकिस्तान प्रोडक्ट पवाना की पकारवी नु बिल्कुल जी तासु हासिल होली शी जमुंगे दा वानी एड्रेस पवाना की बताओ सची इत्तेफाक पतिनवाल जनरल स्टोर गुलशाजान मार्केट कॉलेज रोड वाना बाजार हाजी बास मोहम्मद बाहाजी बोहज बास मोहम्मद गुल एंड मोहम्मद एंड ब्रदर सरबतास्त मिलावीगी जी डॉक्टर अब्दुल महसूद कॉलेज रोड वाना बाजार मौलाना यार मोहम्मद कड़ीकोड बाजार मुहलिस कॉस्मेटिक एंड जनरल स्टोर मिर्जा आलम मार्केट वाना बाजार हमीदुल्ला सरब मिलावीगी जी मीरेली की बतास्त लुलू शॉपिंग सेंटर मलक तारिक मार्केट स्ट्रीट नंबर द्रेम और दुकान नंबर एक मीरेली की बतास्त समुख देसना कॉस्मेटिक पाकिस्तान दगा प्रोडक्ट ए टू जेड मिलावेगी पारिशिकम दे बिल्कुल इंतहाब को लेशी आसान पारिशिकम दे समुख देसना कॉस्मेटिक पाकिस्तान दगा प्रोडक्ट रावले लेशी दीन इलावा चिकम देता उस वाना के चिकम दे अकबर हुसैन बिजनेस बैंक पर मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन चिकम दे आगे की बतास्त मिलावेगी मोहम्मद खान गली वाना बाजार दुकान नंबर नखम की बतास्त मिलावेगी जी दीन इलावा मोहम्मद काशिफ मनियारी एंड कॉस्मेटिक स्टोर चिकम पीर सुल्तान जुमाते

0: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jan Rang Amal.
1: Your music, your request.
2: This is Radio Station. Radio Aman.
3: You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
4: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनोसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
5: سپونی او خاره هم ختموی همیشه د پاره
6: ډاکټر صاحب ډیر مننه زو سم مارکیټ ته ځان د اشما هربل

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and very warm welcome to all the sweet listeners of Global FM 91, Dera Ismail Khan, Radio Pegam 97.4, Pahadpur and Radio Aman 88.4, Dhaka. जनाब सुपर की चार बज चुके हैं और चार बजते ही जनाब आपको आपके अपने शहर आपके अपने इलाके आपके अपने शहर के एफएम के ऊपर जनाब एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज है केसन की, वो आवाज है शिफा की, वो आवाज है सेहत की, वो आवाज है खूबसूरती की। तो जनाब कैसे हैं आप सभी लोग? जनाब उम्मीद करता हूँ कि जनाब बिल्कुल जी खैरियत के साथ होंगे। जनाब इन तीनों शहरों के अंदर जनाब तीनों एफएम के ऊपर जो जो मुझे जहाँ जहाँ सुन रहा है तमाम गर्ल्स एंड बॉयज, अंकल एंड आंटी, चाचा एंड चाची, मॉम एंड मामी, दादा एंड दादी, जान नाना एंड नानी, ऑफ कोर्स सभी सुनने वालों को खलील ताबे शाहवान का सलाम, ढेर सारी मोहब्बतें, सलामती की तमाम तर दुआएं आप सभी लोगों के नाम।

जी जनाब, एक घंटे के साथ आपका और मेरा और उस प्रोग्राम में जिस प्रोग्राम का नाम है केसन टी टाइम। जी जनाब, आपके एक चाय के कप को बहुत ही खूबसूरत बनाने आते हैं हम ये चाहते हैं कि जनाब ये जो आप चाय का कप आपके हाथ में है या आपके हाथ में आने वाला है या आ चुका है, इसके अंदर मिठास कुछ ज्यादा ही हो जाए, लेकिन जनाब इसके अंदर जायका लज्जत केसन का शामिल हो जाए। आप सुने केसन की बातें, आप सुने खूबसूरती की बातें, आप सुने हेल्थ की और सेहत की बातें, और हमारे साथ जुड़े रहे पूरा एक घंटा। जनाब एक घंटा जिसमें हम ढेर सारी बातें करते हैं भाई आप लोगों के साथ, वो बातें यकीन कीजिए कि अगर आप उनको अपने पल्लू के साथ बांध लेते हैं अगर आप अपने पल्लू के साथ इनको बांध लेते हैं और इनको याद रखते हैं, ना सिर्फ याद रखते हैं बल्कि हमारे जाने के बाद अगले 23 घंटे में हमारी ये बातें अगर आपके जहन के अंदर चलती रहती हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है जनाब, और ये कामयाबी हमारी सेल्स को बढ़ाती है, यही हमारी कंपनी को जो है एक खास मर्तबे तक लेके जाती है, क्योंकि जनाब किसी भी कंपनी का किसी भी इंसान का इमेज जो है वो ख्यालात से स्टार्ट होता है। आप उसके बारे में सुनते हैं, आप उसके बारे में सोचते हैं, और ये पहला सिग्नल होता है कि इंसान कामयाब कौन हो जाता है कि जिसके जहन के अंदर आप चले जाएं और वो आपके बारे में सोचना शुरू कर दे। तो जनाब अगर आप हमारी प्रोडक्ट सुनने के बाद, जी जनाब हमारी तमाम तर बातें सुनने के बाद कि केसन क्या क्या प्रोवाइड कर रही है आप लोगों को, और उसके बाद आप सोचते हैं और देखते हैं कि आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आप जो ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या जो शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं वो अप टू द मार्क है, लेकिन अब क्या आपके बालों को जो चीजें चाहिए जो हम आपको बताते हैं कि आपके बालों को क्या कुछ चाहिए होता है, आपकी स्किन को क्या कुछ चाहिए होता है, अगर वो आप प्रोडक्ट जो यूज कर रहे हैं क्या उनके अंदर वही इंग्रेडिएंट वही विटामिन्स मौजूद हैं जो आपके जिस्म को चाहिए, जो आपके बालों को चाहिए, जो आपके स्किन को चाहिए, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप हमारी बातें सुनने के बाद आपको लगता है कि भाई आपकी प्रोडक्ट के अंदर ये तो मौजूद नहीं है, तो जनाब ये वक्त आ चुका है जब आप अपनी चॉइस तब्दील करें और जनाब एक परफेक्ट फॉर्मुलेशन वाली कंपनी केसन नेचुरल पाकिस्तान की अम्ब्रेला के नीचे आ जाएं और एक दफा अपनी लाइफ के अंदर हमारी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके, ठीक है जनाब, इस्तेमाल करके जरा दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए कि जनाब केसन का शैम्पू कैसा है, केसन का ऑयल कैसा है, केसन की क्रीमें कैसी हैं, केसन के सोप्स कैसे हैं, केसन के फेस वॉश कैसे हैं, केसन के हेल्थ की जो प्रोडक्ट हैं वो कैसे हैं, तो इंशाल्लाह आप हमारे पास रहेंगे। एक दफा आने के बाद आप दूर नहीं जा पाएंगे,

लोकेशन 321 एफएम। आप हमारा ऑनलाइन एफएम मौजूद है जनाब, आप 24 घंटे में किसी भी वक्त ऑनलाइन हमें सुन सकते हैं। आपने जी जनाब गूगल बार में जाना है, गूगल के ऊपर लिखना है केसन KAYSON केसन डॉट रेडियो स्ट्रीम 321.com, ये लिखेंगे हमारा एड्रेस तो जनाब आपके पास जो है हमारा ये चैनल आ जाएगा। अदरवाइज आप यूट्यूब के ऊपर जाकर केसन 321 एफएम लिखिए तो वहां पर भी आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जनाब इस घंटे के अलावा भी आप हमारे डिफरेंट प्रोग्राम इस रेडियो एफएम केसन 321 एफएम रेडियो पर समाप्त फरमा सकते हैं।

जी जनाब, केसर नेचुरल पाकिस्तान हमेशा 24 घंटे के साथ अब आपके साथ हम रह सकते हैं। हमारी बातें, हमारी कंपनी की बातें, हमारे प्रोडक्ट्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन आ गई, आप हमसे इन टच रह के। वैसे सोशल मीडिया का दौर है, आप टिकटॉक के ऊपर जाएं या फिर यूट्यूब पर जाएं या फिर आप कहीं पर भी जाएं, आपको हमारा प्लेटफॉर्म नजर आएगा केसर नेचुरल पाकिस्तान के। आगे ही वो हमारी हर चीज आपको मिलेगी। जनाब, आपके जुल्फ की सच्ची मोहब्बत है केसर ना। जी जनाब, क्या क्या केसन ने नहीं बनाया आपके लिए, क्या क्या नहीं बनाया? जी जनाब, जो भी आपकी जरूरत है और हर वो प्रोडक्ट जो आपकी खूबसूरती बढ़ा सकता है भाई, केसन के अम्ब्रेला में आएंगे तो आपको हर वो चीज मिलेगी। जैसे कि केसन की ये हेयर केयर जोड़ी है जनाब, जोड़ी दो को बोलते हैं जी जनाब, और केसन का ऑयल और केसन का शैम्पू। भाई, पहाड़पुर में क्या कोई एक ऐसी दुकान है जहां पर केसन का ऑयल और शैम्पू ना मिलता हो? क्या डेरस मिलखान में कोई एक ऐसी दुकान है जहां पर केसन का ऑयल और केसन का शैम्पू ना मिलता हो?

जनाब, इस जोड़ी के अंदर आपको ऑयल और शैम्पू दोनों मिलते हैं, और हम इम्फेसिस करते हैं इसी बात के ऊपर कि भाई आप दोनों चीजें इकट्ठे खरीदा करें। अगर आपके बाल कमजोर हैं, अगर आपके बाल गिर रहे हैं, ऐसा ऐसे आपके सर के ऊपर जो है सारा आपका गंजा होता जा रहा है और बाल गिरते जा रहे हैं, ठीक है जनाब, हेयर फॉल का जो मसला होता है ना, ये किन लोगों के साथ होता है, कौन से ऐसे कंडीशंस होती हैं कि जब आपको आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे प्रॉब्लम है, कुछ तो मौरूसी होते हैं कुछ लोगों के कि जनाब उनको खानदानी तौर पर ही ऐसा होता है कि उनके बाल जैसे कुछ बड़े होते हैं तो जनाब उनके गिरना शुरू हो जाते हैं और बिलाखिर एज एक वक्त के ऊपर वो गंजे हो चुके होते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के अंदर जनाब जो होता है क्या होता है कि जनाब विटामिन की कमी होती है, खुराक जो खाते हैं वो पूरे तरीके से जो जरूरी होता है, मैं आपको बताऊँ ना, आपकी स्किन कैसे खूबसूरत रह सकती है, कुछ चीजों की जरूरत है। आपके बाल कैसे खूबसूरत रह सकते हैं, कुछ गिजा की जरूरत है। जब ये चीजें अनबैलेंस हो जाती हैं और आप अपनी डाइट के अंदर ये चीजें नहीं ले पाते, जैसे कि आजकल की लड़कियां या लड़के जितने भी हैं जनाब, वो उनकी डाइट जो होती है वो जंक टाइप ज्यादा होती है, ठीक है जनाब, बर्गर खा रहे होंगे जनाब, पिज्जा खा रहे होंगे, समोसे खा रहे होंगे, ठीक है जनाब, हेल्दी चीजें, हेल्दी डाइट, हेल्दी फूड खाना पसंद नहीं करते। यही वजह है कि दिन ब दिन जनाब नई नस्ल के मसले बढ़ते जा रहे हैं। आप यंग लड़कों को देखते होंगे कि जनाब वो 20-22 साल के होते हैं तो उनके बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं। भाई ये तो 35 साल के बाद होते थे, पहले वक्तों में कभी सुना है किसी ने कि जनाब 35 साल से पहले भी किसी के बाल सफेद हुए हैं जनाब? अब मैं 35 साल का तकरीबन हो चुका हूँ, लेकिन मेरा यकीन करें कि सर के ऊपर एक बाल भी जो है, एक बाल भी सफेद, क्योंकि हम पुरानी जनरेशन है ना जी। लेकिन लोगों को आप देखते हैं कि 20 साल के बाद ही बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं। तो भाई गिजा का मसला होता है, डिप्रेशन, ठीक है जनाब, टेंशन है बहुत सारी आजकल के दौर के अंदर मौजूद है ना। सबसे बड़ी टेंशन है कि पेट्रोल इतना महंगा है, पेट्रोल के साथ साथ जनाब और भी बहुत सारी चीजें महंगी हो जाती है, तो टेंशन एंड डिप्रेशन का शिकार बंदा हो ही जाता है। तो उसी वजह से भी वक्त से पहले बहुत सारे मामला आपके साथ हो जाते हैं। गिजा की बेसिकली कमी जो होती है, आपकी खुराक ठीक नहीं है तो आपके लिए बहुत सारे मसले बनेंगे, ठीक है जनाब। अब जो है डिफरेंट विटामिन की आपके स्किन को जरूरत होती है, जैसे कि विटामिन ई है, आप इसकी आपको जरूरत है आप नहीं ले पा रहे हैं, B7 है आपको जरूरत है आप नहीं ले पा रहे, बायोटीन की जरूरत है आपको नहीं ले पा रहे, तो ये किन चीजों के अंदर होती है? अंडे खाएं, बादाम खाएं, अखरोट खाएं, मूंगफली खाएं, केला खाएं, ठीक है जनाब, ये खाएंगे तो आपके बाल जो है वो हमेशा अच्छे रहेंगे। अच्छा, विटामिन डी की कमी जनाब की वजह से क्या होता है, हेयर फॉल बढ़ जाता है। जिन खवातीन के अंदर विटामिन डी की कमी होती है, विटामिन डी की कमी एक और अलामत क्या होती है, जिन यंग लड़के और लड़कियों को जनाब हड्डियों के अंदर दर्द होता है ना भाई, उनके अंदर विटामिन डी की कमी होती है। अब क्या इसमें क्या इस्तेमाल करें, ऐसा कि भाई आपके बाल ना गिरे, विटामिन डी की अगर कमी है तो जरूरी बात है जिस भी फीमेल के अंदर विटामिन डी की कमी होगी तो क्या होगा जनाब, उसका हेयर फॉल होगा। तो उसका हल क्या है, सोल्यूशन क्या है कि जनाब मछली खाएं, आजकल तो वैसे गर्मी है, गर्मी में वाला कौन मछली खाता है, अंडे की जर्दी आप खा सकते हैं। दूसरी बड़ी वजह जो आयरन की कमी होती है, अच्छा ये सबसे बड़ी वजह जो होती है ना, मैं आपको हेयर फॉल की, जो जिन भी खवातीन का हेयर फॉल होता है, बहुत ज्यादा बाल गिरते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है आयरन की कमी होती है, ठीक है जनाब, खून की कमी होती है जिसकी वजह से आपके बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है। अब केसन का जो हेयर ऑयल है जनाब, ये पैक ऑफ आयरन है, ठीक है जनाब, इसके अंदर 17 इंग्रेडिएंट्स मौजूद है। हमारे माहिरीन ने इस चीज को महसूस किया कि भाई जो बालों का सबसे बड़ा मसला जो हेयर फॉल है, हेयर फॉल अगर आपका स्टॉप हो जाता है तो देन उसके बाद सारे मसले खुद बखुद हल होते हैं। अब केसन का जो हेयर ऑयल है भाई, इसके अंदर 17 अज्जा मौजूद है, 17 में से इसके अंदर जो 10 अज्जा है ना, जो 10 चीजें हैं, यानी कि इसके अंदर टोटल 17 है जिसके अंदर जड़ी बूटियां और तेल वगैरह शामिल है, लेकिन इसके अंदर 10 चीजें ऐसी हैं जिनका काम आपके हेयर फॉल को रोकना है। मैं ये आज तक जो है, मैंने आज तक किसी से नहीं सुना कि भाई मैंने केसन ऑयल लगाया और मेरा हेयर फॉल नहीं रुका, कभी भी हमने नहीं सुना। हाँ, ये कंप्लेंट या ये आप लोगों की शिकायत कभी हो जाती है कि भाई जो है मेरे बाल इतने जल्दी लंबे क्यों नहीं हो रहे या घने क्यों नहीं हो रहे, वो ये नहीं बताएंगे कि पहला मेरा ये बहुत बड़ा मसला था कि मेरा हेयर फॉल था, मेरे बाल गिरते जा रहे थे, मेरा एसेट तो जाया हो रहा था, यानी कि मेरा कुल खजाना जो है वो बाल है, क्योंकि मर्द है या औरत है उसकी जो असल खूबसूरती है उसके बाल है। तो अगर आपका हेयर फॉल रुक जाता है तो भाई आप तो बहुत बड़े प्रॉब्लम से निकल चुके हैं। आप उसके बाद जो मरला होता है
वो जब आपके बाल क्या है कि जनाब जब उनको गिजा मिलेगी केसन हेयर ऑयल की सूरत में, 17 17 अज़ा का आमिज़िश। अच्छा मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, आजकल टिकटॉक का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो लोगों ने जनाब बड़ी बड़ी कढ़ाइयां चढ़ी होती हैं जनाब, उसके अंदर सरसों का तेल डालकर, यानी कि 50 किलो की एक कढ़ाई है जनाब, उसके अंदर जो है 45 किलो सरसों का तेल डालकर, उसके अंदर 1 किलो सिकाकाई, 1 किलो रीठा, 1 किलो डिफरेंट किस्म की चीजें, कलवंजी, ठीक है जनाब, ये चीजें डालकर उसको कढ़ाई चढ़ी हुई है जनाब, और वो वीडियो दिखा रहे हैं, और वीडियो दिखाकर जनाब बनाकर आपको कह रहे हैं कि भाई ये देखें हम ये ऑयल बना रहे हैं, और इस तरीके से जो है आप अपने यकीन कीजिए ये कोई तरीकाकार नहीं है। एक प्रीमियम क्वालिटी का जो ऑयल होता है ना, वो इस तरीके से नहीं बनता है, बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं बनता है। केसन का ऑयल बिल्कुल कढ़ाई में नहीं बना हुआ, ठीक है जनाब। केसन का जो हेयर ऑयल है, आप इसको जब देखेंगे ना, ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, यानी कि ये बोतल में ठहरा होगा ना, बोतल में रेड कलर का ये ऑयल होता है, तो दूसरी तरफ से भी चीजें नजर आ रही होंगी। ये क्या वजह होती है, अगर हम भी कढ़ाई चढ़ाते, ठीक है जनाब, उसके अंदर रीठा डालते, उसके अंदर सिकाकाई डालते, उसके अंदर कलवंजी और इस तरह की बाल छड़ और दुनिया जहान की जितनी भी जड़ी बूटियां हैं वो सारी डालते, और इसको पिघलाकर, ठीक है जनाब, इसको अच्छे तरीके से हीट देकर, इसको छान कर आपको हम देते, तो फिर भी मैला तो नजर आता ना, क्योंकि जब जड़ी बूटियां क्या होते हैं, गंद होता है ना, जड़ी बूटियां क्या होते हैं, तो उसके अंदर तो आप उसके ट्रांसपेरेंट तो नहीं बना सकते उस ऑयल को जो इस तरह के तरतीब से बना हुआ। तो जो केसन का हेयर ऑयल है भाई, वो इस तरह से कढ़ा के अंदर कढ़ाई से बना हुआ बिल्कुल भी नहीं, ये आपको हम क्लियर बताते चले। हम एक्सट्रैक्ट के ऊपर काम करते हैं और इसके अंदर एक्सट्रैक्ट मौजूद है, ठीक है जनाब। वो जैसे आपको, आपने देखा होगा कि नाम सुना होगा चंपी का, चंपी ऑयल का नाम आपने सुना होगा, वो एक लड़की आई है जिसने तारीख बदल दी है पाकिस्तान की, दुनिया की, कि भाई ऑयल कैसे बनाते हैं। हम तो आपको 2021 से यही ऑयल इसी तरीके से दे रहे हैं, जिस तरह वो अब आके हर एक चीज का ऑयल निकाल के बताती है कि कद्दू का तेल इस तरह निकलेगा, प्याज का तेल इस तरह निकलेगा, ठीक है जनाब। तो वो मशीन के थ्रू निकाल कर, जिसको कहते हैं कोल्ड प्रेस प्रोसेस, ठीक है जनाब, कोल्ड प्रेस। एक होता है ये जो लोग कढ़ाई में बनाते हैं, ये कोई और तरीका कार होता है, असल जो तेल आपके बालों में जान डालता है ना, वो एक्सट्रैक्ट से, यानी कि आपने प्याज का, एक ये है कि जनाब कोई कहे कि भाई मैं आपको प्याज का तेल बना के देती हूँ या बना के देता हूँ, तो वो कढ़ाई के अंदर सरसों का तेल डाल ले और उसके बाद जो है 8-10 जो है प्याज काट कर उसको पिघला, उसको हीट दे दे के उसके बाद छान के आपको दे दे के भाई ये है प्याज का तेल, ये बिल्कुल फजूल सी बात है, और ऐसे तेल आपको कभी भी रिजल्ट नहीं देते, ठीक है जनाब, क्योंकि ये कहानी है नहीं, इस तरह होते नहीं है। हाँ एक तरीका कार है कि जो प्याज का बीज है, ठीक है जनाब, जो प्याज का बीज है, प्याज नहीं, जो प्याज का बीज होता है उसको कोल्ड प्रेस तरीके से, यानी कि मशीन के अंदर डाल के उस बीज से जो तेल निकलेगा ना, वो तेल फिर आप लगाए सकते हो। ये हमारा जो ऑयल है इसके अंदर जितने भी 17 अज़ा है, ये जहर में मत रखिए कि जनाब इन्होंने भी ऑयल की ऐसी कढ़ाई चढ़ाई और उसके अंदर 17 चीजें डाल दी, नहीं, एक एक चीज का अर्क इसके अंदर मौजूद है, ठीक है जनाब। उनके जो एक्सट्रैक्ट है ना, एक्सट्रैक्ट जो होते हैं जड़ी बूटियों के, वो इसके अंदर, या ऑयल जिन चीजों से हासिल किया जाता है वो इसके अंदर शामिल है। तो इस तरीके से यही वजह है कि जब आप हमारा ऑयल खरीदते हैं, जब हथेली पे डालते हैं तो सोने सा लगता होगा आपको, इसलिए तो हम कहते हैं ये तेल नहीं सोना है भाई।

0: जी जनाब, केसन शैम्पू द रेवोल्यूशन। क्यों कहते हैं रेवोल्यूशन, इनकलाब को कहते हैं जनाब। ऑयल और शैम्पू की जोड़ी बहुत ही इनकलाबी जोड़ी है हमारी, और ये जो बातें आज मैंने आपको बताई हैं, कोशिश करें अपने खाने को, अपनी गिजा को बेहतर करें, ठीक है जनाब। और साथ साथ में जनाब हमारे ऑयल और शैम्पू का भी इस्तेमाल करें, ताकि बहुत कम वक्त में आपके मसले मसाइल खत्म हो जाए। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है जनाब, उन्हें मौका देते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टी टाइम। शबीर शबरा उस्ताद सनल मौजूद इन केस कॉल से।
1: जी जी जी, बड़ा अच्छा तफसीली बयान करेंगे सर, कैंपर और ऑयल के क्योंकि कीमती जोड़ी है, दाल या सब्जी या गोश्त जोड़ी जो खर्चे सस्ती को सस्ती इंसान की सियात दुबारे जोड़ी है। अगर तू गोश्त का पता कर, अगर 700-800 रुपए 1200-1400 रुपए का किलो थींदा गोश्त का, दाल दा तो वो बहुत महंगी है, अगर सस्ती दौरी सस्ती हर शायद बालों की गदाश करे थी, पहले बालों को घना करे थी, पहले बालों को जो है ना मजबूत करे थी, बाल थोड़े घिरे रहन तबड़ा उन्हें कुछ गए थी, क्या करे थी चमकदार करे थी, बाकी खुशबू करे थी, सस्ता तो होना।
0: अच्छा शबरा उस्ताद, एक गाल था असम याद है कि करेसी, लेकिन तुस सारे यूजर ही वेट, क्या तुस आखसो के इने ए सारे काम कर छोड़े इन तुम्हारे इलाके दे लोग जाए यूज?
1: बिल्कुल बिल्कुल, इस जोड़ी को सारी बताओ दिए तो इतना माल चली गा वेंदे वक्त में तेरे कॉल करना जो भाई शामी जोन दे
0: नहीं मोबाइल जोन वाला भाई साहब को आदन के भाई साहब सुनो नहीं तू साहब कितना पी सकते हैं भाई साहब को ऑयल ते शैम्पू सारे को पूछा भी ना करो तो अपनी मर्जी ते भेज दीता करो, इतनी ज्यादा डिमांड है।
1: ज्यादा तकलीफ न कुछ थी
0: हमारे साथ है, और ये हो नहीं सकता कि आप केसन का ऑयल और शैम्पू इस्तेमाल करें और आप जो है सेटिस्फाइड ना हो।

जनाब, अस्सलाम वालेकुम खलील भाई। माशाल्लाह केसन मॉर्निंग शो शुरू किया है आपका, शाम 7 बजे वाला शो सुना करते थे, अब होता है या नहीं होता, जिसमें आप किस्से सुनाया करते थे। मैं इस्लामाबाद से वापस आ गई हूँ, आज रेडियो ऑन किया तो आपकी आवाज सुनी सुबह के वक्त, बहुत अच्छा लगा। चलो जी, बहुत शुक्रिया। सुबह के वक्त आजकल 7 बजे जो हमारा पहला शो होता था वो अब 4 बजे आ गया, ठीक है नसीबा कुंडी। तो आप मॉर्निंग में हमारा मॉर्निंग शो भी सुन सकते हैं, और जी जनाब बिल्कुल, और आप हमारा 4 बजे ये भी प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम के टीए अनीसा का सलाम केसन के नाम। अच्छा जी, नाम मानूर है मेरी जान, कैसी हो? जब जब करेंगे टांग अवाम इस्तेमाल, खरीदने लग जाएगी पूरी की पूरी दुकान, सब सुनने वालों को मेरा सलाम। हम कहते हैं कि जब करेंगे टांग वाले केसन का इस्तेमाल, खरीदने लग जाएंगे पूरी की पूरी दुकान। और ऐसे ही हो रहा है जनाब, टांक वाले केसन के ऊपर बिस्मिल्लाह कर चुके हैं और प्रोडक्ट खरीद रहे हैं माशाल्लाह। और जी, ये जो प्रोडक्ट आप लोग मांग रहे हैं, हाजमा कंट्रोल सिरप, मेरे ख्याल में शायद उनके पास थोड़ा पड़ा हो इसलिए आज उन्होंने ऑर्डर भेजा है, लेकिन 1-2 दिन में, क्योंकि उसके हम प्राइस को कम कर रहे हैं, आपको खुशखबरी देंगे कि एक इतनी अच्छी प्रोडक्ट जो कि मैदे के तमाम मसाइल के लिए, जो गैस के लिए, हम उसको मजीद उसकी प्राइस कम करके आपकी तरफ ले गया। अस्सलाम वालेकुम गड़ा शहबाज से अब्दुल हादी स्टडी माशे सलाम कह रहे हैं जी। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, ये हमें कॉल करते रहते हैं अक्सर और आप इनकी पश्तो सुनते रहते हैं। अनीसा का मैसेज आया हुआ है, अनीसा ने अभी हमारे प्रोडक्ट शुरू किए हैं या नहीं किए। अस्सलाम वालेकुम खलील भिरा, मेरी तरफ से आपकी सारी टीम को और सबको सलाम। आपका भाई असदुल्ला खान जाफर फ्राम जाफरा वाला, जी जनाब पहाड़पुर से। अच्छा, आज भाई टांग में हमारी ट्रांसमिशन जा रही है क्या? हाँ जी, मुझे चेक करने दे। आज टांग वालों की तरफ से बिल्कुल खामोशी है, ये मैंने जितना भी फीडबैक पढ़ा है ना, ये पहाड़पुर FM क्या है, ठीक है जनाब। तो भाई दो और FM के ऊपर भी हमारी आवाज जा रही है, रेडियो पैगाम 97.4 के ऊपर भी जा रही है, डेर इस्माइल खान में ग्लोबल FM 91 के ऊपर भी जा रही है। सलाम भाई, मैंने 5 दिन के बाद मैसेज कर रही हूँ, कैसे हैं आप भाई? अरूबा आपी रानी परी को मेरा सलाम, सब भाइयों को सलाम, अंसा भाई नोमी भाई को मेरा सलाम, मी फातिमा। आपका प्रोग्राम बहुत मीठा है, सब सुनने वालों को सलाम। मोहब्बत अजहर जंदर जो है जी हमारे साथ मौजूद हैं, और इनका ताल्लुक कहाँ से है? इनका ताल्लुक भी पहाड़पुर से है। जी जनाब, आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं 03449363666 के ऊपर, और हम आपको बता रहे हैं।

0: जनाब हर जुल्फ की पहली मोहब्बत है केसन, क्योंकि जनाब केसन के पास ही वो प्रोडक्ट हैं जो आपके बालों को प्यारा बनाते हैं। जी हमारे साथ और इनको मौका देते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकात।
0: तो जनाब क्या हाल है? मैं बिल्कुल जी ठीक हूँ। नाम बताएंगे अपना मोहतरम?
1: जी जी खिजर टांग से।
0: अच्छा जी खिजर, आज टांग वालों ने कसम तोड़ दी।
1: आपने आपने आपने बोला ना टांग वाले आज बहुत
0: सोए हुए हैं। मैंने कहा आज इन्होंने जाए तो चाय पी के सो गए हैं।
1: कोई नहीं है, प्रोग्राम सुन रहे हैं लेकिन लोगों की बातें जो रही है उनके उनको गौर कर रहे हैं।
0: अच्छा अच्छी ठीक है, बड़े सियाने लोग हैं जी, पहले गौर करके बातें सुन रहे
1: यार। तो खलील भाई पहले पहले आजमाए फिर पाए।
0: अच्छा ठीक है जी, चलो अच्छी बात है। चलो एक दिन ऐसा आएगा कि आप सब आप लोग बोल रहे होंगे, इनको मौका भी नहीं मिलेगा। खिजर भाई
1: जी क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि हमने तो ये एक लाख अभी तक तो है कि जो दर्दों वाला तेल वो इस्तेमाल किया है उसके ऊपर दिन भी बात की थी।
0: हाँ हाँ बिल्कुल।
1: और कोई करीम शरीम या कोई शैम्पू मैम्पू अभी तक नहीं लिया?
0: ये जब आप लेंगे ना, ये जो मेरे पास
1: इंशाल्लाह जो आपका पैकेज लगा वो इंशाल्लाह ये भी ले लेंगे।
0: तो ये जो ऑयल की हम जोड़ी की बात कर रहे हैं ना, जोड़ी जोड़ी शैम्पू और ऑयल, ये जोड़ी जब घर लेके जाएंगे तो इंशाल्लाह घर वाले भी खुश, बच्चे भी खुश और आप भी खुश, क्योंकि जनाब शैम्पू डेली इस्तेमाल की चीज है और ऑयल आपके मसाइल को हल करता है भाई। हर औरत का ख्वाब होता है लंबे चौड़े घने बाल होने चाहिए मेरे। इंशाल्लाह आप इस्तेमाल करेंगे और इस दफा अगली दफा जब आएंगे आप और ज्यादा खुश होकर आएंगे और साथ में हार भी लेके आएंगे कि भाई को पहना दूं, इतने अच्छे प्रोडक्ट कंपनी बना रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया खिजर भाई, थैंक यू, थैंक यू।
1: ओके
0: जनाब, ये मैंने जो हार वाली बात की है ना, ये एक बंदे ने मुझे हार भेजे हैं। ठीक है जनाब, वो वीडियो पड़ी होगी, आप टिकटॉक के ऊपर जाए ना, मेरी आईडी के ऊपर, खलील ताबे शमान की आईडी के ऊपर, तो वहां पर एक वीडियो बनी हुई है जिसमें मैंने खुद हार पहने और बंदे ने गिफ्ट भेजा मुझे। ठीक है जनाब, उसके अंदर बहुत सारे उसके इलाके की चीजें थी और साथ में हार भी रखा हुआ था और हार के साथ लिखा हुआ था कि भाई आपने ना ये आपने हार मेरी तरफ। अब उसको पता नहीं था कि इसने वीडियो बनानी है या क्या करना है, लेकिन उस बंदे की खुशी देखिए कि उसको बालों का बहुत बड़ा मसला था, उसके बाल बहुत ज्यादा गिर रहे थे। जावेद अकबर खान नियाजी पहाड़पुर का हमारा लिसनर है। ठीक है जनाब, वो अक्सर जो है मोहब्बतें अपने दिखाता रहता है, तो उसने मुझे स्पेशल हार भेजा था कि आपने ये हार पहनना है क्योंकि भाई मेरा दिल खुश होगा कि मेरे बाल इतने ज्यादा गिरते थे और आपके प्रोडक्ट की वजह से ना, ये आप वीडियो जाके देख सकते हैं टिकटॉक के ऊपर जो इन्होंने जो मुझे हार भेजा हुआ था। जनाब कालर एक साथ हैं हमारे साथ, जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, आवाज आ रही है आपको? अच्छा जी, रेडियो से मुझे सुन रहे हैं। अच्छा तो मैं बता रहा था कि उन्होंने ना मुझे हार भेजा स्पेशली कि आपने पहना है मेरा हेयर फॉल जो रुक गया। तो भाई इतने प्यारी
2: पहला प्यार
0: जी जनाब, आवाज आ रही है आपको?
3: जी आ रही है।
0: अच्छा जी आ रही है, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं, नाम बताएंगे अपना?
3: कश्यप बात कर रहे हैं, कुराइश से।
0: अच्छा कश्यप बात कर रहे हैं, हमारी पुरानी। तो आज आप क्यों इतनी डरी डरी हुई हैं? पीछे से इंस्ट्रक्शंस सुन रही हैं। ठीक है जनाब, कमांडर की हिदायत आ रही हैं कि कौन सी बात करनी है कौन सी नहीं करनी। कश्यप
3: जी
0: डरी हुई है आज, पहली दफा तो कॉल नहीं कर रही है, इससे पहले भी तो आपने कॉल की?
3: जी बिल्कुल।
0: अच्छा जी, तो आज हम भी बात कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की। टांग वाले कहते हैं भी पहले हम ऐसे पैसे थोड़ी लगाएंगे, पहले तो हम सुनेंगे आपकी बातें। तो कश्यप क्या सुनाने जा रही है टांग वालों को, हेयर केयर जोड़ी जो है केसन की?
3: मैं तो ये कहूँ कि बहुत अच्छा ऑयल और शैम्पू है, आप इस्तेमाल करें एक बार।
0: एक दफा इस्तेमाल करेंगे तो फिर बस उनके बाल लंबे हो जाएंगे?
3: जी लंबे घने और इतने ब्लैक, इतने ब्लैक होते हैं, बहुत अच्छे बाल हो जाते हैं।
0: हाँ जी, ऐसा प्यारा रिजल्ट मिलता है। तो आप इससे पहले कोई और शैम्पू इस्तेमाल करती थी क्या? जरूरी बात करती होंगी।
3: हाँ जी सर, करती थी कि वो छोड़ दिया, अब तो उसका नाम ही नहीं लेती हूँ।
0: नाम ही नहीं लेती है। तो ये शैम्पू और ऑयल अगर मैं ये बोलूँ कि दोनों में से आपको सबसे बेस्ट इस जोड़ी में सबसे ज्यादा बेस्ट कौन लगता है, हीर या रांझा?
3: जी
0: इस जोड़ी में सबसे
3: हीर लगती है, हीर लगती है।
0: अच्छा हीर कौन है फिर, शैम्पू है
3: जी?
0: अच्छा अच्छा, ये शैम्पू बहुत पसंद है आपको हमारा किचन का? क्या फायदा, क्या क्या क्या फायदा शैम्पू का, कोई एक फायदा बताएं जिसकी वजह से आपको ये बहुत पसंद है किचन का शैम्पू?
3: मेरे बालों में खुश्की थी ना, वो खत्म हो गए शैम्पू से, बाल धोने से।
0: अच्छा, शैम्पू के इस्तेमाल से आपकी खुश्की खत्म हुई है, और क्या फायदा आपको नजर आया इसके अंदर?
3: और बहुत से फायदे,
0: बहुत सारे फायदे, यानी कि बाल आपके जब लोग उसको देखकर अब हैरान परेशान होते हैं तो इसका मतलब है कि इस जोड़ी ने आपको बहुत सारे फायदे दिए हैं। ठीक है जनाब, हमारे साथ कश्यप मौजूद थी और एकदम से आपके मैसेजेस जो है आ गए हैं और एंड के ऊपर जो है आप लोग जाग गए हैं, और एंड के ऊपर नहीं जागना चाहिए जनाब, दरमियान में जागना चाहिए। आपके मैसेजेस भी अभी आए पड़े हैं हमारे पास, और कौन है? अच्छा जी, हमजा केमटा का गया, डी ए खान का मौसम कैसा है, कौन पूछ रहा है? अजहर कह रहे हैं मौसम गर्म है शहजादे, काफी गर्म है। ठीक है जनाब, आमिर अमान पाकिस्तानी, कोई मंडी तो खरगोश आया, इश्क मोहब्बत भी चोट लगी, नी हाले तक दिल को होश आया। अच्छा जी, ये आमिर अमान पाकिस्तानी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका शो बहुत नाइस है मुझे

0: तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 डांग की नशिया, हमारे साथ रहिए, हमारे साथ रहिए।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है, वो जो कुन-फ़यकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 डांड की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: कांपता है दिल तेरा अंदेशाए तूफान से क्या, ना खुदा तू बहर तू किश्ती भी तू साहिल भी तू। देख आकर कूचाए चाके गिरेबां में कभी, कैस तू लैला भी तू सहरा भी तू महमिल भी तू।

तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरिया, हमारे साथ रहिए।

नो टेंशन ब्यूटी क्रीम द खुला यो रास नो टेंशन ब्यूटी क्रीम दमक धनो पेरसरो हल्को चियानो और दमक विष्टानु तपारा नो टेंशन ब्यूटी क्रीम उस्तासु पुखपल हार डिस्टिक टांग के हपासा न मिले विदेशी पहर मेडिकल स्टोर जनरल स्टोर के अवेलेबल दी नो नामी या सते नो टेंशन ब्यूटी क्रीम द खुला रास नो टेंशन ब्यूटी क्रीम।

0: 8:10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4.
1: Your music, your request.
2: This is Radio Station. Radio Aman.
3: जिंदगी में सुकून सेह से जुड़ा होता है और जब इलाज कुदरती हो तो यकीन खुद बहुत बढ़ जाता है। इश्मा हर्बल ऑयल, कुदरत का इलाज, सुकून का एहसास और शफा का भरोसा। इश्मा हर्बल ऑयल कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा एक ऐसा ऑयल जो बेशुमार बीमारियों में मुफीद है, जैसा कि मैदे की तेजबियत, जलन, बदहजमी, बोक की कमी, कब्ज, दिल और गुर्दों की तकलीफ, जोड़ों और पट्टों के दर्द, सर दर्द, मुंह के चाले, ये सब तकलीफ अब खत्म, क्योंकि हल है सिर्फ और सिर्फ इश्मा हर्बल ऑयल। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा ये शिफा बहश ऑयल जिस्म के अंदर और बाहर दोनों के लिए मुफीद। इश्मा हर्बल ऑयल, कुदरत का मुकम्मल इलाज, हर दर्द का आसान हल।
0: यू आर लिस्निंग रेडियो अमन नेटवर्क।
1: वी गॉट मोर हिट्स फॉर यू, सो स्टे ट्यून्ड।
0: 88.4 FM।
4: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
5: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
4: وی اللہ دوم را زر سنگا
5: اسماخ صفات پیچی کریم

जिसकी याद में हम परसों से रात को ना सोए तो दिन को सो गए है ना। फराशिया क्यूट रोशनी खोरिया सीमा बो एमन एंड सब लिसनर को सलाम एंड स्पेशल सलाम और आरजे नाजमान भी एड्स मीज ओके जमा खुर खुशहाल शेख दरमन शेखा

अपनी बेबसी अपनी खामोशी मुझे गले गले लगा के रोई, तेरे एहसास तेरी यादें मुझे तसल्ली दे के रोई। हाय हाय अपनी बेबसी अपनी खामोशी मुझे गले लगा के रोई, तेरे एहसास तेरा एहसास तेरी यादें मुझे तसल्ली दे के सोई। जब जालिमों ने मुझे जुदा किया तुमसे, वो शाम आज भी याद है मुझे, वो मेरी आंखों से निकाले आंसू के कतरे डेरा ला। वो मेरी भी बसी दिल के पुकारे, वो सितमगर वो जालिम वो बर्बाद अपने मेरी, वो इंजाम आज भी याद है, वो इंजाम आज भी याद है मुझे, वो तेरी मीठी आवाज ने सुन सकी मेरी तेरी मीठी बात है। वो बंद हो जाए, वो बंद हो गई हमारे से भी राबते, मुझे ले जाओ तुम खुदा के वास्ते। वो कलाम मेरे आज भी याद है मुझे, ए रला। फ्राइडे को नाइट शो होगा आपका इंशाल्लाह। हाँ नंदा से मैं लिख स्लो स्लो प्रोग्राम का सीधे से बिल्कुल ओके है। फाइन हाँ नारे दर तो मैं कच्चे कसूरी हो कम कहना से वो जिससे कसूर है वो हम ची हारा यार दर पास घर जम्बे कह रहा रहा यार है मसूर के महा मैं लिख स्लो प्रोग्राम का आराम आराम से रहा राजस्थान के पसंगों में देखा लग पटे लगे कि नज़र में दास से नाजमान भाई आपको सलाम, सब भाई को सलाम आए में खिसाम मासूम यदा टांग को जरिबाद ना खिसाम बुलाए जुर्माना दर पसे लगे थे लिदो चीते वो रक्षे हुए साड़ियाँ मुझे वरक लौटा वाले शाम जो भैया आई लिसनिंग सडनली यू वरवाइस आई Asmir, I really, really miss you. I am Ruba Malik. Ruba Malik singh ya khore shai. Hey, hello, just me, just my bro. Hal suno. How are you? Welcome to the beautiful show. I am Ruba Malik. Apni chuti si dunya mein khud mukhtar rakhna dusro ke mehal mein mukhtaj rakhne se behtar hai. I am Ruba Malik. You are right.